सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

0: संगीतकार जो एक आर्मी ऑफिसर से बने महान म्यूजिक डायरेक्टर।
1: मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है।
0: एक ऐसे नेक दिल इंसान जिन्हें कहा गया गजलों का शहजादा।
2: रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं,
0: और जिनकी धुने हुआ करती थी एकदम परफेक्ट। हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार मदन मोहन जी के जिंदगी से जुड़े अनसुने किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली।
1: लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो।
0: इस रविवार 21 जून सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

और नारी। रास्ता देखे महल अटारी, पूछे अवध के नर और नारी। रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल्या दुखियारी।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

श्री गोविंद गीता अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन श्री कृष्ण को सृष्टि का सृजक, पालनहार, अजन्मा अविनाशी परम पुरुष स्वीकार करते हुए पूछता है कि हे प्रभु, आप इस दृश्य जगत में कैसे व्याप्त हैं? वह किन किन भावों में आपका चिंतन किया जा सकता है?

श्री भगवान अपने विस्तारों को असीम व अनंत कहते हैं, फिर भी कुछ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि इस जगत में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो मेरा ही प्रतिरूप है, मेरा ही विस्तार है। परंतु हे परंतप, यह सब तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं तो एक अंश के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि में

0: शक्ति आ रही है, पानी बढ़ता जा रहा है। भागो!
1: हर वर्ष तबाही, हर वर्ष विनाश और बर्बादी। हमें इस छिंकल जल प्रवाह को रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा।
0: छिंकल जल प्रवाह, छिंकल जल प्रवाह की कहानी दशकों पहले की है। मैं शताब्दियों से निर्भीक प्रवाहित होता चला आ रहा था, अपनी शक्ति का परिचय देता हुआ, अपने पाषाणी तटों को उत्क्रमित करता हुआ, मानवीय शक्ति को चुनौती देता हुआ।
2: लगता है तुम दामोदर हो।
0: हाँ, मैं दामोदर हूं। नदी नहीं, नद। ब्रह्मपुत्र, शोणभद्र जैसे इन्हीं गिने नदों में एक। पुराणों में मुझे बार बार नद ही कहा गया है।
2: अच्छा है, तुम अपना परिचय स्वयं देने लगे, हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे।
0: परिचय चाहिए तो चलो मेरे उद्गम स्थान को, वहीं से चलो मेरे साथ साथ। हाँ, यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है, 3000 वर्ष से भी पहले। यहां मुझे देखकर कौन समझेगा कि मेरे भीतर कितनी ऊर्जा छिपी हुई है। ये उद्गम स्थान कोई गंगोत्री नहीं है, यमुनोत्री नहीं है, एक पहाड़ी जल स्रोत का उद्गम स्थान है।
2: ये स्थान है बिहार के छोटा नागपुर में, लोहरदगा जिले के पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच। यहीं से दामोदर की पतली धारा निकलती है। चारों ओर हरे भरे जंगलों से घिरी पहाड़ियां, ऊपर खुला आकाश, सुबह की मुस्कुराती धूप, सांझ की लाल हंसी, पक्षियों का कलरव। यहीं से दामोदर का जल स्रोत फूटता है, जो आगे चलकर विशाल नद में बदल जाता है। इसके भौतिक रूप का परिचय तो कोई भूगोलवेत्ता ही दे सकता है। प्रोफेसर डी पी सतपथी,
3: दामोदर नदी छोटनागपुर की पहाड़ियों से सिर्फ 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा की तुलना में यह बहुत छोटी नदी है। गंगा 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है, जबकि दामोदर सिर्फ 530 किलोमीटर की। बिहार में 290 किलोमीटर बहने के बाद यह पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती है और हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भैरवी, बोकारो, कोनार, गोवाई और बराकर। गर्मी में कहीं कहीं सूखी दिखने वाली यह नदी बरसात में उमड़ पड़ती है।
2: पलामू की पहाड़ियों से उतरकर ये नदी आगे बढ़ती है। अगल बगल साल, शीशम, सेमल आदि के पेड़ों से भरे जंगल गाते रहते हैं। कहीं कहीं किनारे पर बसे गांवों का जीवन पर्व त्योहार मनाता हुआ नाचता गाता रहता है।

सुनो, मेरी आवाज सुनो। दामोदर कमर पेट पहाड़ी से उतरकर यहां तक चला आया।

0: जिन्हें उसका ओजस्वी स्वर नहीं सुना। सुना लोगों ने मेरे तट पर बसे रामगढ़ में सैनिक छावनी का संगीत, सैनिकों का अभ्यास परेड, वहां प्रसिद्ध सिख रेजिमेंट की छावनी है ना। और उसके बाद आया है ये स्थान। ऊंचाई से सहसा नीचे उतरती मेरे जल प्रवाह को सुना जा सकता है। इसमें केवल मेरा नहीं भैरवी का भी स्वर है।
1: हाँ, ये दामोदर और भैरवी का संगम है, प्रसिद्ध तीर्थ राजतपा, जिसे अब लोग रजरप्पा कहते हैं। प्रकृति की सुंदर लीला भूमि है ये। यही एक प्राचीन शिला भूमि के ऊपर स्थित है माँ छिन्नमस्ता का पावन मंदिर। इसके महात्म के संबंध में पंडित बालेश्वर नाथ पाठक बतलाते हैं।
2: यही मेधा ऋषि ने राजा सुरथ को देवी महात्म्य बतलाया था और उन्हें देवी की आराधना करने का परामर्श दिया था। यह प्रसंग मार्कंडेय पुराण में आया है। यही राजा सुरथ ने कठिन तपस्या से देवी को प्रसन्न किया था, इसी से इसका नाम पड़ा राजतपा। आज भी माँ छिन्नमस्ता के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
1: मानव विज्ञान के प्रोफेसर रमाकांत प्रसाद कहते हैं,
3: दामोदर नदी का मंदिर में सबसे मुख्य मंदिर है रजरप्पा, जो कि सबसे आराध्य देवी मानी जाती हैं, चाहे वो जनजाति हो इस क्षेत्र का, गैर जनजाति हो, पिछड़ी जाति हो या और कोई भी हो। इसलिए और यहाँ लोग जितने हैं वे शादी ब्याह मुंडन या जीवन संस्कार के जो भी हैं उत्सव, सब का केंद्र उसी को मानते हैं।
0: मैंने इस मंदिर को बनते देखा है, इसे ही नहीं अपने तट के सभी निर्माणों को देखा है। मुझे याद है अभी कुछ दशक पहले तक मेरी विनाश लीला से लोगों में हाहाकार मचा रहता था।
1: बाढ़ आती थी, तबाही होती थी।
4: दामोदर अभिशाप की नदी के रूप में प्रसिद्ध रही है। इस नदी ने 3000 वर्ष पहले अपने तट पर एक गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया था, वही अभिशाप में बदल गई है। गत 700 वर्षों में बार बार इसमें बाढ़ आई, 20 तो बहुत भयानक रही। सन 1943 की बाढ़ ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हजारों गांव बह गए, महानगर कलकत्ता के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया था। तब शासन ने दामोदर की चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया, बांधों की योजना बनी। 7 जुलाई 1948 को भारत की संविधान सभा ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन बिल पास किया और काम शुरू हुआ।
1: उस समय पंडित नेहरू ने कहा था, दामोदर घाटी योजना स्वाधीन भारत में प्रारंभ की गई महत्व विकास योजनाओं में एक है। इसने नए भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसी बड़ी योजना जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी को कार्यान्वित होते देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है। कार्य प्रारंभ हुए दामोदर को बांधने के। केवल दामोदर नहीं, उसकी प्रमुख सहायक नदियों को भी, क्योंकि दामोदर की विनाशकारी शक्ति केवल उसकी शक्ति नहीं उसकी सहायक नदियों की भी थी। एक के बाद एक बांध बनने लगा। 21 फरवरी 1953 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बराकर पर तुलैया बांध का उद्घाटन किया।
0: 1955 में दामोदर पर दुर्गापुर बांध का।
1: 1957 में बराकर पर मैथन बांध का और दो ही वर्ष बाद

0: और स्वाधीन भारत के नव जागृत लोगों ने मुझे बांध दिया, उदाम शक्ति संपन्न दामोदर को बांध दिया। नए भारत ने मेरी शक्ति पहचानी, उसने शताब्दियों से आते हुए अभिशाप को वरदान में बदल दिया। अब मेरी शक्ति उसकी शक्ति बन गई है, मेरी ऊर्जा उसकी ऊर्जा बन गई है।
1: स्वाधीनता प्राप्ति के बाद नए भारत के नए तीर्थ बनने लगे दामोदर के तट पर। हर बांध एक तीर्थ, हर उत्पादन केंद्र एक नया मंदिर, अनेक नए नए औद्योगिक संस्थान खड़े हो गए इसके किनारे।

मेरे तटों पर पहले जंगल का संगीत सुनाई पड़ता था, पक्षियों का कलरव गूंजता था, लोक जीवन के गीत ध्वनित प्रतिध्वनित होते थे। अब मशीनों का घर घर लौह संगीत सुनाई पड़ता है।

0: ये बोकारो जिले में तोनू गांव के निकट तोनू घाट बांध है दामोदर नदी पर, बोकारो थर्मल पावर प्लांट के दक्षिण पश्चिम में। सन 1965 में इसकी नींव पड़ी थी। जलापूर्ति 1972 से शुरू हुई। बोकारो स्टील प्लांट और दूसरे उद्योगों को तो इससे जलापूर्ति की ही जाती है। बंगाल के कई भागों तक इसका पानी पहुंचता है।
1: वही देखो वहां छोटे छोटे हरे भरे वृक्ष और झाड़ियों से घिरी पहाड़ियों की बगल में कोई फैक्ट्री है। चिमनी से निकलता धुआं काला नहीं, नीला नहीं, बिल्कुल पीला, जिसमें कभी कभी लालिमा छिटक पड़ती है। नीला आकाश और उसमें गिरते बादल के टुकड़े उस पीले धुएं में रंग जाते हैं।
0: ये गोमिया का बारूद कारखाना है। इसके प्रशासनिक सेवा प्रबंधक अरुण कुमार वर्मा के शब्दों में,
2: भारत में पहला और सबसे बड़ा व्यावसायिक बारूद का कारखाना छोटा नागपुर के कोनार और दामोदर नदियों के बीच स्थित है। इस कारखाने का उद्घाटन 1958 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। राष्ट्र के निर्माण में सतत सहयोग देता आया है।
0: उधर एक और नया मंदिर है। दामोदर की सहायक नदी बोकारो पर निर्मित बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, और वहीं थोड़ा आगे बढ़कर दामोदर पर बना चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। बोकारो का स्टेशन जब 60वें दशक में बना था तब देश का सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादन केंद्र था, और यही है बोकारो का लौह उत्पादक औद्योगिक संस्थान BSL, जिसकी परियोजना अधिशासी निदेशक यज्ञ प्रकाश शर्मा ने बताया।
3: बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना एक कंपनी के रूप में 29 जनवरी सन 1964 को हुई थी। इस स्टील प्लांट की जो कल्पना की गई वो ही इन मुद्दों को देख करके की गई कि इस स्थान में हमको पास में ही अयस्क है, कोयला है और पानी है।
0: दामोदर पर आधारित स्टील प्लांट सिर्फ बोकारो में नहीं है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक डॉक्टर सुरेश झा अजीत के शब्दों में,
4: दामोदर नदी पर आधारित है भारतीय इस्पात प्राधिकरण के 3 प्रमुख इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, बर्नपुर एवं बोकारो। बर्नपुर, दुर्गापुर एवं बोकारो के इस्पात कारखानों का देश की प्रगति में बहुमूल्य योगदान रहा।

0: है। इन कारखानों ने इस क्षेत्र की काया ही पलट दी है।
1: ये सिंदरी का खाद कारखाना है, स्वाधीन भारत में पब्लिक सेक्टर का पहला खाद कारखाना। मशीनें चल रही हैं, भट्टी के चिमने से आग की लाल लाल लपटें निकल रही हैं, धुएं के बादलों से एक ओर का पूरा आकाश ढक गया है। इस कारखाने के बारे में भारतीय खाद्य निगम सिंदरी के विद्युत एवं जल सेवा अधीक्षक दीप नारायण प्रसाद।
2: फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंदरी यूनिट की स्थापना 1951 में, कमिश्निंग 1951 में हुई। उस समय इसकी स्थापना दामोदर नदी के किनारे इसलिए की गई कि पानी की आवश्यकता काफी पर्याप्त मात्रा में इस कंपनी को है।
3: मैंने इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खुले हाथों से अपना वरदान लुटाया है। मैंने लोगों को जल की सुविधा दी, विद्युत उत्पादन केंद्र बने, कल कारखाने खुले, और ये सब संभव हो सका मेरी कोयला खानों से।
1: देश में उपलब्ध इस काले सोने की संपदा का आधा हिस्सा दामोदर की तटवर्ती खानों से ही निकाला जाता है। सीसीएल के बीएमके क्षेत्र के डिप्टी चीफ सर्वे ऑफिसर एम पात्रो का कहना है,
4: बिहार से बंगाल तक जितना कुल कोयला है वही दामोदर का चलते ही हुआ है, और ये दामोदर के ही है, दान है। उनके क्षेत्र में यहाँ दामोदर का नीचे बहुत से कोयला है, जिसके लिए हम लोग दामोदर रिवर को दूसरे तरह से डाइवर्ट करने का प्रोग्राम बनाया है।
1: सचमुच सार्थक नाम है दामोदर का, कभी सांस्कृतिक दृष्टि से ये सार्थक रहा होगा, आज भौतिक संपदा की दृष्टि से सार्थक है। इस नदी के उदर में विशाल भौतिक संपदा छिपी हुई है।
3: मैंने लोगों को अपनी संपदा दी है, उनके जीवन को विभिन्न रूपों में समृद्ध बनाया है।
1: दामोदर के जीवनदायी महत्व को उसके तटवर्ती उद्योगों, संस्थानों और बस्तियों के लोग सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। भारत कोकिंग कोल के चांच विक्टोरिया क्षेत्र के प्रधान प्रबंधक आरसी पांडे कहते हैं,
5: दामोदर नदी हम लोगों के लिए एक बड़ी देन है इस एरिया के लिए। उसके नहीं होने से हम लोग कुलेरी वालों को जल के लिए तथा बालू के लिए तकलीफ होती है। ये विदित है कि कुछ क्षेत्रों में हम लोग कोयला निकालकर बालू भर देते हैं ताकि ऊपरी सतह या विलेज या शहर डैमेज ना हो, और इसके लिए हम लोगों को बालू इस दामोदर नदी और बराकर नदी से मिलता है।
3: कितना अंतर आ गया है मेरे जीवन और परिवेश में। आज जहाँ खाने हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, नए बसे शहर हैं, वहां कभी जंगल थे, सिर्फ जंगल।
1: द इंडियन नेशनल आर्ट एंड कल्चर से संबद्ध बुलु इमाम कहते हैं,
6: हमारे दामोदर नदी भी ऐसे ही एक पूरा जंगल का इलाका था। कमरपेट पहाड़ जहाँ से उठती है, वहाँ से लेकर के रानीगंज कोल फील्ड तक ये जंगल ही जंगल था।
1: बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के स्थान से विस्थापित सोहन गोप,
7: अभी तो हम यहाँ के जो है खास करके जो है बासी हैं, और यहाँ का मेरा जो है बाप दादे ने जो है इस मकान को यहाँ से रखा, खेत जमीन भी सब बनाया इस जगह पर। हम लोग को पूरा जो है जीवन इसी में हम लोग को व्यवत करता था। खेत बाड़ी था चारों तरफ से, इसमें जो है सब उपजाऊ जमीन था, जंगल भी काफी था।
3: मेरे तट पर अनेक बड़े बड़े औद्योगिक नगर बस गए हैं, पर आज भी किनारे पर बसे गाँव के लोग अपना सहज जीवन जीते जा रहे हैं, नाचते हुए, गाते हुए, पर्व त्योहार मनाते हुए।
1: तटवर्ती गांव के लोग नाचते गाते जी रहे हैं, पर जमाने का दर्द उनके गीतों में भी उतर आया है।
8: ना वो दो नदी बस्ती हो का ना लेखा पोड़ा आते
1: हम लोग पशु की तरह मेहनत करते हैं, सब कुछ पैसा मिलता है। हम आदिवासी बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, हम लोग माटी का

0: पालन करते हैं।
1: उनसे भी अधिक गहरा दर्द उनका है जो अपनी जमीन से विस्थापित हो गए हैं।
0: मैथन बांध के निकट गोगना गांव का रहने वाला मैनेजर टुडू कहता है,
2: पहले खेती बाड़ी करते थे, जमीन जगह भी था, बांध पुखुर भी था, और ऐसे फालतू का दिन में मछली उछली भी हम लोग पकड़ते थे। अभी तो मछली मिलने से भी उतना हम लोग नहीं करते हैं, और ऐसे करता है तो लेकिन डीबीसी को पकड़ लेता है, आप लोग काहे मछली पकड़ते हैं।
0: जो विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, की जा रही है, पर है तो वे अपनी धरती से विस्थापित है।
1: हाँ, दामोदर की संतानें विस्थापित हुई है, मुझे उनसे सहानुभूति है। पुरानी व्यवस्था बदलती है तो कष्ट तो होता ही है, पर नई व्यवस्था बनने के अपने लाभ भी है।
0: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर अजीत,
3: छोटे छोटे गांवों के समूह के स्थान पर आधुनिक सुविधा संपन्न नगर विकसित किए गए हैं। इन संयंत्रों ने यहाँ स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर दिए हैं, वहाँ लघु उद्योगों की स्थापना में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। अनजाने गांव व कस्बे आज भारत के मानचित्र पर गौरवमय स्थान अर्जित कर चुके हैं।
0: खाने में नए औद्योगिक संस्थानों में नए बसे नगरों में लोगों को नई नई सुविधाएं मिली हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किनारे की क्षेत्रीय संस्कृति अखिल भारतीय संस्कृति में बदल गई है। बोकारो के सांस्कृतिक जीवन से जुड़े अमलेंद्र चैटर्जी कहते हैं,
4: यह हम लोगों को एक गर्व है कि आस्ते आस्ते स्टील प्लांट बढ़ते हुए हम लोगों का संस्कृति भी बढ़ते गया है। यहाँ बोकारो स्टील प्लांट में हमारा भारतवर्ष का हर एक प्रोविंस का, ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंस का कुछ ना कुछ आदमी एम्प्लॉयड हुए हैं, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हर एक जाति हर एक भाषाओं का संस्था डेवलप करने लगा, जैसा आपको भोजपुरी समाज फॉर लोकल भोजपुरी पीपल, देन उत्कल पठागार था फॉर ओरियस, मिलवर्तन संस्था था फॉर पंजाबी पीपल, देन मलयाली समाजम था फॉर केरलाइट्स, देन आंध्रा एसोसिएशन फॉर आंध्राइट्स, तमिल मंद्रम फॉर तमिल पीपल, कनाडा संघ था फॉर कर्नाटक पीपल।
0: इसी प्रकार विभिन्न धर्म वाले के लिए धर्म स्थानों की व्यवस्था हुई है। राम मंदिर, शिव मंदिर, कालीबाड़ी, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, बौद्ध विहार आदि। ये सिर्फ बोकारो और सिंदरी की बात नहीं, सभी नए बने औद्योगिक नगरों में भी यही बात है। दामोदर भारतीय संस्कृति का नद है, सर्वधर्म समय

माँ कल्याणेश्वरी के मंदिर से आरती की आवाज आ रही है, मैथन से, माई के स्थान यानी माई स्थान से। शताब्दियों पहले माता कल्याणेश्वरी के इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मैंने इसे बनते देखा है। सिद्धपीठ है या एक तरह से बराकर के तट पर स्थित है यह मंदिर। बहन बराकर वहां से आगे बढ़कर मुझसे यहाँ सेंगोरिया में मिलती है और इसके बाद हमारी यात्रा साथ साथ चलती है।

ये बंद भूमि है जिसे कभी दामोदर के जल प्रवाह ने बार बार तबाह किया था। 1955 में दामोदर तक दुर्गापुर बांध का उद्घाटन हुआ और फिर अनेक नहरें निकाली गईं, तो इस इलाके का नक्शा ही बदल गया। बाढ़ का आना तो रुका ही, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी और पूरा क्षेत्र अत्यंत उर्वर बन गया।

जीवन को इस पाठ संगम से बना तो इस क्षेत्र का रूप ही बदल गया। काल के घने जंगल, छोटे छोटे गांवों और खेतों से घिरे दुर्गापुर को लोग जंगल महत के नाम से जानते थे। कारखाना खुला।

0: सारा ग्रामीण परिवेश एक आधुनिक विस्तृत औद्योगिक नगरी में बदल गया। मैं इसका साक्षी हूँ।
1: इतना औद्योगिक विकास शायद ही किसी अन्य नदी के तट पर हुआ है। दामोदर के किनारे विकसित उद्योगों ने उसके लिए ही नहीं, उसके तटवर्ती समग्र जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। उसके किनारे 15 कोल वॉशरीज हैं, 6 पावर प्लांट हैं, 4 उर्वरक और रासायनिक संयंत्र हैं, 1 सीमेंट फैक्ट्री है, स्टील प्लांट भी है, बारूद कारखाना भी है। इन सब के बहिर्स्राव राख, कोयला चूल, तेल के धोवन आदि से दामोदर का जल प्रदूषित हो रहा है, उसका जल विषाक्त बन रहा है।
0: उसी से कहता हूँ, मुझे विष की धारा में मत बदलो। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुम मुझे जीवन दो। मैं तो समय का यात्री हूँ, समय के साथ चलता आया हूँ। बंगाल की सबसे श्यामला धरती पर मैं हुगली नदी में मिलता हूँ और उसी के साथ जाकर सागर में समाहित हो जाता हूँ, स्वयं सागर बन जाता हूँ।

आता जा रहा है दामोदर। ये बांधे का मत है, निर्माणों का मत है, खनिज संपदा का मत है, सुख समृद्ध का मत है, अभिशाप से वरदान में रूपायित हो जाने वाला मत है। ये कृषि संस्कृति और औद्योगिक सभ्यता के समन्वय का मत है, सौंदर्य और पौरुष का मत है, भक्ति और शक्ति का मत है। शताब्दियों से बहता चला आया है, बहता चला जा रहा है दामोदर।

ಕಗನ ಬರುವಾಯೋ, ಅಂತರ ಕೀರು ಕಗನ ಬರುವಾಯೋ, ಅಪನೀ

श्रोताओं, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि सती दाह से क्रुद्ध हुए भगवान शिव शंकर ने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया।

0: उन्होंने दक्ष और दक्ष यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। भयंकर युद्ध के बाद वीरभद्र ने दक्ष को मार डाला, उसका सिर काटकर अग्नि में भस्म कर दिया। दक्ष वध के बाद सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति रुक गई। चिंतित ब्रह्मा और विष्णु देवाधिदेव शिव के पास गए, उनसे दक्ष को क्षमा कर फिर से जीवन दान देने की प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनका अनुरोध मान लिया, स्वयं जाकर दक्ष को जीवित कर दिया। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: शौनक जी, कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। जब असुरों ने देखा कि भगवान शिव अखंड ध्यान में मग्न हैं, तो उनका साहस बढ़ने लगा और वे धीरे धीरे अपना सर उठाने लगे। दिन प्रतिदिन उनके अत्याचार बढ़ते ही गए।
2: तो क्या अपनी प्रजा के बढ़ते कष्टों को देख परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कुछ नहीं किया?
1: किया क्या नहीं शौनक जी, उनके हाथों अनेक दुर्दम्य असुरों का वध हुआ, परंतु असुर श्रेष्ठ तारकासुर उनके वश में नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसके गले तक पहुंचकर पुष्पमाला बन गया था। वो तीनों लोगों को जीतकर उनका स्वामी बन गया था।
2: आश्चर्य है महाज्ञानी सूत जी, तारकासुर इतना बलशाली कैसे बन गया?
1: तारकासुर ने एक समय में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे इच्छित वर दे दिया था।
3: नारायण नारायण, विधात आपके वरदान के कारण ही तो तारकासुर अजय बन गया है।
4: पुत्र नारद,
5: हम भगवानों की तो प्रकृति ही है अपने भक्तों को सुखी बनाना। हम सब भक्तों को स्वच्छ मन से वरदान देते हैं उनके हित के लिए।
3: परंतु परमपिता, कभी कभी आपका कोई भक्त आपके वरदान को ही अपना अस्त्र बना लेता है, अपने हित के लिए दूसरों का अहित कर डालता है।
6: मुने नारद, हम हर एक जीव को उसके जन्म के समय मस्तिष्क देते हैं। उस मस्तिष्क में हम कोई विचार नहीं भरते। उसका कैसे उपयोग करना है यह हर एक प्राणी का निजी अधिकार होता है।
5: हमने प्राणियों के लिए तीन गुण बनाए हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। अब ये प्राणी के मस्तिष्क पर निर्भर है कि वो कौन सा गुण अपनाता है। जो जैसा गुण अपनाएगा वैसा ही व्यवहार भी करेगा।
3: किंतु श्री हरि, सृष्टि का संचालन तो आपके हाथों में है।
6: है, अवश्य है, परंतु प्राणियों का मस्तिष्क हमारे अधीन नहीं है। यदि अधीन होता तो देवता, मानव और असुर में भेद क्यों होता? सभी सत्कर्म करते हुए सत्य के ही पथ पर चलते तो आज हमें तारकासुर के दुष्कर्मों से पीड़ित होकर उसके विनाश की बात न सोचनी पड़ती।
3: हे विधि, जब आपको ज्ञात ही था कि असुर उत्पाती हैं, तो प्रभु उनको पैदा ही क्यों किया?
6: मुने नारद, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए विविधता आवश्यक है, नहीं तो हर पेड़ पौधे का एक ही आकार होता, हर मानव मानवी, सुर असुर सभी का एक ही रूप होता। कल्पना करो, जीवन कितना नीरस होता।
3: परंतु असुरों द्वारा ये विध्वंस तो आप रोक सकते थे प्रभु।
5: महानिर्माण से पूर्व महाविध्वंस आवश्यक होता है। जितना ऊंचा और बड़ा भवन निर्माण करना हो उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदी जाती है। समतल भूमि पर अट्टालिकाएं बना पाना संभव नहीं है।
4: और पुत्र, जैसे निर्माण के लिए विध्वंस आवश्यक है, वैसे ही विध्वंस के लिए निर्माण आवश्यक है।
3: नारायण नारायण, प्रभु आप किस निर्माण की योजना बना रहे हैं?
5: शिव पुत्र की उत्पत्ति की योजना नारद।
3: शिव पुत्र? प्रभु आप ये असंभव।
5: तारकासुर और उसका वंश उन्हीं असुरों में से है जिन्हें मात्र शिव पुत्र ही मार सकता है।

0: किंतु देवी सती की मृत्यु के बाद ये कैसे संभव होगा?
1: पुत्र, सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए असंभव को संभव बनाना ही होगा।
0: परंतु कैसे परमपिता?
1: सदाशिव का दूसरा ब्याह रचाकर।
2: परंतु विधे, भगवान शिव शंकर तो गहरी तपस्या में लीन हैं। तंद्रा भंग होने से क्रोधित भी हो सकते हैं।
1: हाँ भगवान, हो सकता है। और ऐसा ना भी हो तो भी प्रश्न ये उठता है कि लीलाधर भगवान शिव शंकर की पत्नी कौन होंगी?
2: महाप्रभु, महाप्रभु माता शिवा के अतिरिक्त किसी और को तो स्वीकार भी नहीं करेंगे। अब उन्हें ही पुनः अवतार लेना होगा।
1: परंतु इस बार किस रूप में लक्ष्मी पते?
2: ये विचारणीय है।
0: नारायण नारायण नारायण। प्रभु विष्णु, आपके श्वेत द्वीप में शीघ्र ही एक धार्मिक संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है।
2: हाँ नारद।
0: और परमपिता, आपके मानस पुत्र सनत कुमार इस संगोष्ठी में भाग लेने आ रहे हैं। उनके मुख से निकले शब्द ब्रह्मवाक्य माने जाते हैं प्रभु।
2: तो
0: प्रभु, दक्षराज ने अपनी पुत्री स्वथा का विवाह पितरों से किया था। उनकी तीन मानस पुत्रियां हैं, मेना, धन्या और कलावती। तीनों ही परम विदुषी हैं और धर्म की मूर्ति है प्रभु। प्रभु, यदि वे इस धर्म गोष्ठी में आ जाएं तो
2: तो क्या ऋषिवर नारद, आप क्या लीला रचने जा रहे हैं?
0: नारायण नारायण।
3: परंतु मुनि श्रेष्ठ नारद, संतों के समागम में स्त्रियों का क्या काम?
0: नारायण नारायण। ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये पितरों की मानस पुत्रियां हैं। ये अयोनिजा अवश्य हैं, परंतु लोक व्यवहार में ये स्वधा पुत्रियां ही मानी जाती हैं। ये तीनों ही परम योगिनी और ज्ञानी हैं।
3: अच्छा,
0: हाँ,
3: इनका धर्म ज्ञान तो अभी स्पष्ट हो जाएगा। देवी मेना, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आपके उत्तर ही हमें संतुष्ट कर पाएंगे कि आप इस संत समागम में भाग लेने योग्य हैं या नहीं।
4: पूछिए सनत कुमार।
3: भक्ति के कितने अंग होते हैं देवी मेना?
4: भक्ति के 9 अंग होते हैं देव। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण।
3: उत्तम, अति उत्तम। इनके स्वरूप क्या होते हैं देवी?
4: सनत कुमार, सबसे पहले है श्रवण, अर्थात प्रभु लीलाओं की कथाएं सुनना, और फिर कीर्तन, अर्थात उच्च वाणी में प्रभु के गुणगान करना, भजन आदि करना, और तीसरा है स्मरण, अर्थात प्रभु को सर्वव्यापी मानकर सदैव निर्भय रहना।
3: और सेवन देवी?
4: हृदय और इंद्रियों से प्रभु की सेवा को सेवन कहते हैं। प्रभु को किनकर समझकर उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना दास्य कहलाता है। इसी प्रकार धन वैभव के सामर्थ्य के अनुसार प्रभु को पाद्यादि 16 उपचारों को समर्पित करना अर्चन होता है।
3: परंतु देवी, अभी वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण शेष हैं।
4: जानती हूँ सनत कुमार, उनके बारे में भी बताती हूँ। मंत्रोच्चार करते हुए इष्ट देव को साष्टांग करना वंदन होता है। ये विश्वास रखना कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो मंगल के लिए ही होता है, सख्य भक्ति का स्वरूप है। और देह समेत अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देना, अपने निर्वाह के लिए कुछ भी ना बचा के रखना आत्मसमर्पण कहलाता है।
3: आपने सिद्ध कर दिया देवी मेना, सिद्ध कर दिया कि एक शिक्षित स्त्री धर्माचरण जानती है, अतः वो पुरुषों के साथ संत समागम में हिस्सा ले सकती है।
0: नारायण नारायण नारायण।
4: क्षमा करें ऋषि सनत कुमार,

0: केवल शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित स्त्री भी धर्माचरण जानती है। पतिव्रत धर्म से बड़ा धर्माचरण भला और कौन सा हो सकता है?
1: हम समझे नहीं देवी मैना, व्याख्या कीजिए देवी।
0: मुनिवर, धर्माचरण के लिए आप मुनियों को बटना तो नहीं पड़ता, परंतु पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली नारी को भिन्न भिन्न रूप लेने पड़ते हैं। कभी वो पति की प्रेयसी बनती है, तो कभी सेवा करने वाली दासी, कभी वो पति की वंश परंपरा चलाने के लिए जननी बनती है, तो कभी पति का अपमान करने वाले के लिए दुर्गा। इस पत्नी धर्म के अंतर्गत कितने ही अन्य धर्मों का निर्वाह करना पड़ता है। स्त्री अगर ये धर्माचरण छोड़ दे तो उसका परिवार टूट जाता है।
1: धन्य है आप, धन्य है देवी मैना।
2: नारायण नारायण नारायण।
1: मैं बहुत प्रसन्न हुआ देवी मैना, बहुत प्रसन्न हुआ। मैं आपको तथा आपकी दोनों बहनों धन्या तथा कलावती को आशीर्वाद देता हूँ।
3: ज्येष्ठा मैना, आप हिमगिरी राज हिमवान की पत्नी बनेंगी और आपकी पुत्री पार्वती के नाम से विख्यात होगी।
2: नारायण नारायण नारायण।
3: योगिनी धन्या, आप राजा जनक की पत्नी होंगी। आपके यहां स्वयं महालक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होंगी। और कलावती, आप द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी बनेंगी। आपकी पुत्री राधा श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होंगी।
2: नारायण नारायण नारायण।
4: आइए हमारे वाम में विराजिए, महाप्रभु के आदेश से दुर्गा स्तुति आरंभ करते हैं।

0: माते, जगत जननी, आपके दर्शन मात्र से ही हृदय के सभी क्लेश धुल गए हैं।
1: हे शिवलोक निवासिनी, आपने हम भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है।
2: हे कल्याणकारी शिवा, आपके चरण का स्पर्श पाते ही ये समस्त हिम प्रदेश पवित्र हो गया है।
3: माते, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। प्रसन्न रहो हिमवान पत्नी मेना। ब्रह्मदेव, आप भविष्य वक्ता हैं। आप मुझसे किस भविष्य की अपेक्षा रखते हैं?
0: माते, आप सर्वज्ञा से कुछ भी कहना सूर्यदेव को दीप दिखाने जैसा होगा। फिर भी अम्बे, हम सबका आपसे एक निवेदन है।
3: निसंकोच कहिए देवगण।
1: माता शिवा, सती रूप में आपके अवतरण से समस्त जगत प्रसन्न और निश्चिंत हो गया था, परंतु पिता

0: द्वारा पति के तिरस्कार के कारण आपने देह त्याग कर दिया। इससे संपूर्ण सृष्टि शोक में डूब गई है माते। स्वयं महादेव विरक्त होकर तपस्या में लीन हो गए हैं माते।
1: अंबिके, आपके स्वधाम पधार जाने से देवताओं का मनोरथ अपूर्ण रह गया है। वे अपने ही लोक से निष्कासित कर दिए गए हैं। सब और असुर राज

0: माते, माते आप मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर तीनों लोकों के वासियों को असुरों से मुक्ति दिलाएं।
1: माते, आप पुत्री के रूप में मेरे यहाँ अवतरित हों।
2: शिव पत्नी बनकर संतान उत्पन्न करें माते, जो हमसे वरदान प्राप्त कर असुरों का नाश करे।
3: ऐसा ही होगा विष्णु हरि, परंतु मैना आज्ञा महादेवी, इसके लिए तुम्हें आने वाले चैत्र मास से 27 वर्ष की तपस्या करनी होगी।
0: जो आज्ञा माते, परंतु माँ।
3: कहो मैना, मन में कुछ ना रखो।
0: माते, मुझे वर दीजिए, मुझे पुत्र प्राप्ति भी हो, जो असुरों का विनाश करने में सक्षम हो।
3: तथास्तु। मैना, तुम मेरे अवतरण से पूर्व 100 बलशाली पुत्रों को जन्म दोगी। उनमें सर्वोत्तम होगा मैनाक, उसके पश्चात मैं पुत्री के रूप में तुम्हारी गोद में आऊंगी। तुम उसका नाम पार्वती रखना। पार्वती अर्थात पर्वत की पुत्री।
4: आप धन्य हैं महादेवी, धन्य हैं।
1: आपने अपने भक्तों पर असीम कृपा की है माते।
2: हम आपके सदा से ही ऋणी रहे हैं माते।
1: आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं।
5: महाज्ञानी शौनक जी, ये वरदान देकर महादेवी शिवलोक लौट गईं। देवी मैना ने महादेवी की आज्ञा से 27 वर्ष का तप आरंभ किया। महादेवी के आशीर्वाद से मैना को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से सर्वश्रेष्ठ था मैनाक।
6: परंतु महाभाग, तीन लोकों के प्राणी तो बड़ी आतुरता के साथ पार्वती जन्म की प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
5: हाँ शौनक जी, देवी शिवा के आशीर्वाद से हिमवान के घर एक अत्यंत रूपवती कन्या ने जन्म लिया। महादेवी के आदेश पर ही उसका नाम पार्वती रखा गया। चारों दिशाओं में आनंद का वातावरण छा गया। घर घर मंगल वाद्य बज उठे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे।
6: ये सब तो स्वाभाविक ही था, तारकासुर संहारक की जननी ने जो जन्म लिया था।
5: हिमवान पुत्री पार्वती वर्षा में गंगा की जलराशि की तरह बढ़ने लगी। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव भक्ति की प्रबल भावना थी। वो हिमवान के घर में प्रतिष्ठित शिवलिंग के सामने बैठ जाती और घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। एक दिन उनकी भक्ति से विभोर होकर नारद मुनि बालिका पार्वती के दर्शन को वहां पहुंचे।
7: नारायण नारायण नारायण।
1: महर्षि नारद, आपके आगमन से मैं धन्य हुआ। पुत्री पार्वती को आशीर्वाद दें।
7: नारायण नारायण। गिरिवर हिमवान, स्वयं जगदम्बा को भला मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? मुझे तो इनके दर्शनों की अभिलाषा यहाँ खींच लाई है।
0: महर्षि नारद, आप तो भविष्य वक्ता हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर इसका भविष्य बताइए।
7: देवी मैना, आपके घर में तो स्वयं शिवा ने जन्म लिया है, भविष्य का निर्माण करने वाली का भविष्य भला मैं क्या बताऊं? फिर भी पुत्री पार्वती, अपना हाथ तो दिखाओ। गिरिराज, आपकी पुत्री की हस्त रेखाएं तो शुभ लक्षण ही दिखा रही है। नारायण, ये माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी, ये परम साध्वी तथा स्वजनों को आनंद देने वाली बनेगी।
0: और पति मुनि श्रेष्ठ,
7: अपने पति को ये अत्यंत सुख पहुंचाएंगी। इसके पति सदा इनकी सेवा से प्रसन्न रहेंगे और इनका आदर सम्मान करते रहेंगे। परंतु ये क्या
0: क्या हुआ मुनि नारद?
7: ये तो बड़ी ही विलक्षण रेखा है।
1: मुनिवर, शीघ्र बताइए क्या अशुभ होने वाला है?
7: नारायण नारायण नारायण, आपने अशुभ की बात कैसे सोच ली? गिरिराज, देवी का कोई अशुभ कर सकता है? बस

0: पति का रंग रूप स्वरूप कुछ
1: बताइए महामुनि बताइए, रुक क्यों गए?
0: तो सुनिए देवी मैना, इन्हें एक अर्ध नग्न भभूतधारी निर्गुण निष्काम सन्यासी पति के रूप में मिलेगा।
1: ये कैसी भविष्यवाणी कर डाली आपने ऋषिवर, मेरी यह सुंदर पुत्री एक कुरूप योगी की पत्नी बनेगी?
0: यही सत्य है देवी मैना, इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये विधि का विधान है।
2: परंतु महर्षि, परम पिता ब्रह्मा ने तो ये आशीर्वाद दिया था कि स्वयं देवाधिदेव शिव पार्वती के पति होंगे।
0: नारायण नारायण नारायण, आपको इस आशीर्वाद पर भी संशय नहीं होना चाहिए।
1: परंतु जिस रूप का आपने वर्णन किया है वो देवाधिदेव का हो ही नहीं सकता, वो तो अत्यंत सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी है।
0: नारायण नारायण, आपका कथन भी सही है देवी मैना, परंतु समय और काल कभी कभी व्यक्ति को रूप बदलने को भी बाध्य कर देता है। नारायण गिरिराज हिमवान,
2: महर्षि
0: देवी मैना आप निश्चिंत रहें, पार्वती को शिव ही प्राप्त होंगे। पार्वती जीवन पर्यंत उनकी सहभागिनी बनी रहेंगी। नारायण
3: फिर महामुनि सूत जी, घटना चक्र किस प्रकार घूमा?
4: शौनक जी, उत्तम गुरुओं से शिक्षा दीक्षा पाती देवी पार्वती बड़ी होने लगी। यौवन अवस्था में पहुंचते पहुंचते पिता हिमवान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी।
3: चिंता? कैसी चिंता सूत जी महाराज? पार्वती जी को वरदान प्राप्त था कि उनका विवाह शिव से होगा।
4: शौनक जी, पुत्री के विवाह की चिंता पिता के लिए स्वाभाविक ही होती है, और ये चिंता मात्र दरिद्र पिता को ही नहीं होती, सर्वसाधन संपन्न पिता भी इससे मुक्त नहीं होते।
2: सृष्टि रचयिता परमपिता ब्रह्मा को मेरा नमन है।
5: उत्तुंग भव पर्वतराज हिमवान, व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हैं? पुत्री पार्वती का महादेव से विवाह होना निश्चित है।
2: परंतु कैसे? महादेव ने सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग रखा है, उनका समग्र ध्यान इस समय परम ब्रह्म में है, इसी कारण वे देवताओं तक को दर्शन नहीं दे रहे। वे ध्यान छोड़कर विवाह की ओर कैसे उद्यत होंगे? और फिर
5: रुक क्यों गए गिरिवर, कहो और फिर क्या?
2: प्रभु, किन्नरों के मुख से एक और बात भी सुनने में आई है।
5: वो क्या है वत्स हिमवान?
2: कहते हैं कि भगवान सदाशिव ने दक्ष पुत्री सती से एक प्रतिज्ञा की थी। प्रभु ने वचन दिया था कि वो उनके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का वरण नहीं करेंगे। देवी सती की मृत्यु के पश्चात सदाशिव अपनी ये प्रतिज्ञा कैसे तोड़ेंगे?
5: तुम बहुत भोले हो गिरिवर, तुम्हारी पुत्री पार्वती ही अपने पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। सती भी शिवा का ही अवतार थी, और अब वही शिवा तुम्हारे घर आंगन में अवतरित हुई है। शिव और शिवा का साथ तो चिरंतन है पुत्र, इसलिए पार्वती ही शिव पत्नी होंगी, इसमें संशय की कोई बात नहीं।
2: आपके इन वचनों से मैं चिंता मुक्त हुआ भगवान, परंतु
5: हिमवान अब परंतु कैसा?
2: भगवान शिव तो तपस्या में लीन,
5: तपस्या ही तपस्या की काट बनेगी।
2: प्रभु,
5: महासाधी पार्वती तपस्या करके शिव जी का मन मोह लेंगी, अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर को संतुष्ट कर पार्वती भगवान शिव के आधे शरीर को अपने अधिकार में कर लेंगी।
2: प्रभु,
5: इस प्रकार भगवान शंकर का अर्ध नारीश्वर स्वरूप प्रकट होगा। जाओ वत्स, पुत्री पार्वती से शिव आराधना करने को कहो।
2: छो आज्ञा प्रभु, छो आज्ञा।
4: और शौनक जी, पिता की आज्ञा से देवी पार्वती शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी।
3: विप्रवर सूत जी, उनकी तपस्या क्या रंग लाई?
4: महाज्ञानी शौनक जी, पार्वती की तपस्या कोई सीधी साधी तपस्या नहीं थी जो शीघ्र ही सार्थक हो जाती।

0: उनका लक्ष्य था महादेव को पति के रूप में पाना। ये लक्ष्य भले ही असाध्य ना हो परंतु कठिन अवश्य था।
1: आप उचित कहते हैं सूत जी, भोले भंडारी को प्रसन्न करना हर एक के वश की बात नहीं।
0: शौनक जी, लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसे पाने के लिए उतना ही कठिन परिश्रम करना होता है। परिश्रम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं।
1: तो देवी पार्वती का यह परिश्रम कैसे सार्थक हुआ?
0: शौनक जी, इस विषय को हम अभी यहीं विश्राम करने देते हैं। आगे की कथा कुछ समय उपरांत।

अर्जुन देव गुरु, अर्जुन देव गुरु, अर्जुन देव।

0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

दूसरी कड़ी में आप धनुर्भंग तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है श्री विश्व प्रकाश दीक्षित पटुक की लिखी हुई तीसरी कड़ी

0: रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ आनंदित हुए। सबके हृदय में यही अभिलाषा उत्पन्न हुई और सब शिवजी से यही प्रार्थना करने लगे कि राजा दशरथ अपने रहते श्री रामचंद्र को युवराज का पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में बैठे हुए राजा दशरथ ने स्वभावतया हाथ में दर्पण लिया, उसमें अपना मुख देखा और शीश का मुकुट सीधा किया। राजा ने देखा श्रवण समीप भये सित के सा, उन्हें लगा मानो बुढ़ापा उपदेश कर कह रहा है।
1: नृप जुब राज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु।
0: राजा दशरथ ने इस पर विचार कर शुभ दिन और सुंदर समय पाकर गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक मंत्री नगर निवासी शत्रु मित्र उदासीन सब कोई राम को मेरी ही तरह प्रेम करते हैं। आपके ही समान परिवार सहित विप्रगण भी उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। आपके पवित्र चरणों की धूलि की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे।
2: राजन आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
1: नाथ राम करियहिं जुब राजु, आप कृपा कर आज्ञा दें तो तैयारी की जाए। मैं कहता हूं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिसमें सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई चिंता नहीं, शरीर रहे या चला जाए।
2: सुनु नृप, जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरने न जाही। वही सब लोगों के स्वामी श्री राम आपके पुत्र रूप में है, इसलिए बेगी विलंब न करिए नृप। साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो ही जुवराज।
0: दशरथ जी गुरु वशिष्ठ की अनुमति पाकर प्रसन्न चित्त महलों में आए। सबको एकत्र कर मंत्री सुमंत से कहा, जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरख ही राम ही टीका। मुनिवर की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक का सब प्रबंध शीघ्र किया जाए। मुनिवर ने प्रसन्नतापूर्वक मृदुवाणी में संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल, आवश्यक औषध, मूल फूल फल और पत्रादि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनवाकर बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के रत्न तथा बहुत सी मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनिवर ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा,
2: नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो, श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेवों की सब प्रकार से सेवा करो, ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ।
0: मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनिवर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राम के राज्याभिषेक की सब तैयारियां होने लगी, अयोध्या में बधावे बजने लगे।

0: बीच बिलासु। रनिवास में भी ये मंगल समाचार पहुंचा दिया गया। सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगी। कौसल्या ने नाना विद्दान दिया। वे प्रार्थना करने लगी, जे ही विधि होए राम कल्याणु, देहु दया करी सो बरदानु। चारों ओर आनंदमय मंगल गान होने लगे। राम राज अभिषेक सुन ही हरखे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राजा दशरथ की इच्छानुसार मुनि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देने के लिए उनके महल में गए। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री राम ने द्वार पर आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें भवन में लाए, विधि पूर्वक पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरणों का स्पर्श करके बोले,
1: सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। नाथ, उचित तो यह था कि प्रेम पूर्वक इस दास को ही बुला भेजते। नीति भी यही कहती है, किंतु आपने बड़प्पन त्याग स्वयं यहां पधारकर मुझे जो स्नेह दिया उससे आज ये घर पवित्र हो गया। आयुषु होई सो करो गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई।
0: भला राम ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। रामभद्र, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुवराजू। राम करहु सब संयम आजू, जौ विधि कुशल निबाही काजू।
1: जैसी गुरुदेव की आज्ञा, मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। गुरुदेव ये क्या कहकर चले गए, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन की खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ, लेकिन इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो।
0: इधर तो नरनारी राज्याभिषेक के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। उधर बिघन मना वहीं देव कुचाली, क्योंकि तिन ही सुहायन अबध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। सरस्वती को बुलाकर देवताओं ने विनय की, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम राज्य को त्याग कर बन को जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की बात सुनकर सरस्वती पछताने लगी, किंतु देवताओं की बार बार विनय सुनकर उनकी बुद्धि पर पश्चाताप करती वे वहां से चल दी। ऊंचे निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। किसी प्रकार वे अयोध्याई और नाम मंथरा, मंदमति चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती देवलोक को वापस चली गई। तदनंतर मंथरा नगर की सजावट देखकर लोगों से उत्साह का कारण पूछती हुई श्री राम के राज तिलक की बात सुनकर हृदय में जल उठी। वो बुद्धिहीन दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ सकता है। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, वैसे ही श्री राम के राज्याभिषेक के पुण्य कार्य को बिगाड़ने की चालें सोचती हुई मंथरा भरत मां तो पह गई बिलखानी।
2: अरे मंथरा, तू उदास क्यों है? गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। अरे कहते क्यों नहीं, राम राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं।
3: कत सिख देई

0: अमई को माई गालू करम कही करबल उपाई, राम ही छाड़ कुशल कही आजू जही जनेसु देई चुबराजू। कौशल्या के तो विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, इसीलिए वे कर्म में फूली नहीं समाती। मुझसे क्या पूछती हो, देखहु कसना जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु छोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस नाहु हमारे। हाँ रानी, तुम्हें तो तोषक तकियों से सजे पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती।
1: बस बस चुप रह, पुनिया से कब हूँ कहा से घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावा तोरी।
0: हमें क्या, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते।
1: प्रिय वादिनी सिख दीना हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोपु न मोही। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम का राज्य तिलक होगा। सूर्यवंश की तो ये रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक बने। राम तिलक को जो साचो हूँ काली, देव मांगू मन भावत आली। राम को सहज स्वभाव से कौशल्या के समान ही सब माताएं प्यारी हैं। मो पर गरहि स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अगर विधाता कृपा करके मुझे दोबारा मानव देह दें तो ये भी दें कि राम पुत्र और सीता वधु हूं। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके राजतिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता कि क्या बात है, हर्ष के समय विषाद करने का क्या कारण है?
0: एक ही बार आस सब पूछी, अब कुछ कह जीव करी तुझी। फोर जोक कपारु अभागा, भले हु कहत दुख रव रही लागा। अरे माई, तुम्हें तो वो ही प्यारे लगते हैं जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, मैं तो तुम्हें कड़वी लगती हूँ। हम हूँ कही बाब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहू दिन राती। विधाता ने कुरु बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष देना, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कौन पुहो हमें कहानी, चेर छाड़ अब होप की रानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, छमही देव बड़ चूक हमारी।
1: अरे तू बुरा मान गई, तू तो मेरे हित की ही कहती है, बता तो भला क्या बात है?
0: तुम पूछो मैं कहत डरा हूं, थरे हूं मोर घर फोरी ना हूं। पर चलो, मैं तो आपको अपना सब कुछ मानती हूं, इसीलिए कहती हूं। रानी, तुमने जो कहा है कि तुम्हें सीता और राम प्यारे हैं और राम को तुम प्यारी हो, सो ठीक ही है, लेकिन राहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई प्रीते। देखो, सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूरज कमल को जलाकर भस्म कर देता है।
1: अरे तू कहना क्या चाहती है मंथरा, साफ साफ कह।
0: सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है,
1: क्या
0: उपाय की पार लगाकर उसकी रक्षा करो। तुम्हें ही न सोच सुहाग बल, निज फस जान न हुराओ। लेकिन रानी, मन मलीन मुंह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव।
1: मंथरा,
0: राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाक कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली, राजा ने भरत को जो ननियाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा करती हैं, एक भरत की माँ ही ऐसी है जो पति के बल पर गर्व करती है। इसीलिए माई, कौशल्या को तुम बहुत ही चुभ रही हो, वो कपट करने में बड़ी चतुर है,
2: इसीलिए उसके हृदय का भाव आसानी से जाना नहीं जाता।
1: लेकिन राजा,
2: हाँ राजा ही तुम पर प्रेम बिसेखी, सपति स्वभाव सकई नहीं देखी, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के यहाँ ना होने पर राम के राज तिलक के लिए लगन पक्का करा लिया।
1: लेकिन राम का राज तिलक हो,
2: राम का राज तिलक हो, ये तो रघुकुल के अनुकूल ही है। ये बात सबको सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है।
1: आगे की क्या बात मंथरा?
2: भगवान करे उसका उल्टा फल कौशल्या को ही मिले।
1: मंथरा तुझे मेरी सौगंध, तू कुछ छिपा मत, सब सच सच बता। तुझसे बढ़कर मेरा हितकारी भला और कौन हो सकता है?
2: कहा पूछो, तुम अबहू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। पूरा पखवाड़ा बीत गया नगर को सजते और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। अगर मैं अपनी ओर से बना के झूठ कहती हूँ तो भगवान मुझे दंड देगा।
1: नहीं मंथरा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तू झूठ क्यों कहने लगी?
2: अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। रेख खचाई कहूं भल भाखी, भामनी भई हो दूध कई माखी। अगर अपने बेटे भरत सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। कत्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे।
1: मंथरा,
2: रानी धीरज धरिए, घबराने से काम नहीं चलेगा, साहस के साथ कोई उपाय सोचिए।
1: मंथरा तू ठीक कहती है, दाहिनी आंख नित भर गई मोरी। मैं रोज रात को बुरे सपने देखती हूँ, लेकिन अपने अज्ञान के कारण तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी, सूत सुभाओ, दाहिन बाम न जानो काओ। जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। न जाने दैव ने मुझे एक साथ ही ये कठिन दुख किस पाप के बदले दिया।
3: नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सवति सेवकाई।
1: शत्रु के वश में रहकर जीने से मर जाना अच्छा है।
2: रानी अस कस कहूं माने मनू ना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना। पर कह देती हूं, जे ही राउर अति अनभलता का, सोई पाए यहु फलु परिपाका। स्वामिनी मैंने जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे न दिन में चैन है न रात को, न भूख लगती है न नींद ही आती है।
1: मंथरा तब
2: तुम चिंता मत करो रानी, मैंने ज्योतिषियों से पूछा था, उन्होंने रेखाएं खींचकर हिसाब लगाकर कहा भरत भुआल हुई ये साची।
1: सच
2: रानी अगर तुम कहो तो मैं एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में तो हैं।
1: परम कूप तो वचन पर सकूं पूत पति त्याग, जब तू मेरा ये महान कष्ट देखकर कह रही है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी, तू कह तो सखी।
2: स्वामिनी सुध आई है कि नहीं? तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसके अनुसार दुई वरदान भूप संथाती, मांगहु आज चुड़ा पहुंचाती। पुत्र को राज और राम को बनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
1: सखी मंथरा
2: एक बात का ध्यान रखना, जल्दी मत करना। भूपति राम सपत जब करी तब मांगहू, यही वचन न डरे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरा कहा

0: सीधे कोप भवन में जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, सहसा ही राजा की बातों में मत आ जाना।
1: सखी, तू मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय। तू बहुत ही बुद्धिमान है, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी दूसरा नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जौ विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली।
2: इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार का आदर सम्मान देकर कोप भवन गवनी कहकी

0: अंततो गत्वा सांझ समय सानंद नृप गयउ केकई गे हैं।
1: लेकिन कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ,
0: डर के मारे राजा के पैर आगे नहीं उठते। कैसी विडंबना है, स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर निवास करता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए।
1: सभय नरेश प्रिया पहि गयउ, देखी दशा दुख दारुण भयउ।
0: राजा ने देखा कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के सभी आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं।
1: श्रोताओं, उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश कैसा लग रहा था, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो।
0: किसी प्रकार राजा कैकेयी के पास गए और कोमल वाणी में बोले,
2: प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हो? हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केई दुई सिर केई जम चैलीन्हा, कहू केही रंग कही करौ नरेसु, कहू केही नृपही निकासु देसु। प्रिय, देवता भी अगर तुम्हारा शत्रु होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। कीड़े मकौड़ों के समान वे सारे नर नारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तो सदा तुम्हारे मुखचंद्र का चकोर है। प्रिय, मेरी भुजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे अधीन है। मैं सच कहता हूं, मुझे राम की सौगंध है, मैं तुमसे कुछ भी कपट करके नहीं कह रहा। तुम हंसो और प्रसन्नता के साथ मन चाहा मांग लो, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। प्रिय, अवसर को अवसर तो मन में विचारो। भामिनी, भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, सुनैने तुम मंगल साज सजा लो।
3: मांगु मांगु पै कहो पिए, कबहु न देहु न लेहु।

0: आपने दो वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है।
1: अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है ना? तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूल जाने का स्वभाव तुम जानती ही हो, मुझे भी याद नहीं रहा। अब तुम झूठे हो, हम ही दोष जनि देहु, दुई के चार मांगी मकुले हो। तुम जानती ही हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। प्रिय, एक तो सत्य स्वयं ही सारे उत्तम पुण्यों का मूल है, उस पर मेरे मुंह से राम की शपथ निकल पड़ी है।
0: तो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका।
1: अच्छा
0: नाथ, दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। हाँ। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए।
1: हाँ।
0: तापस वेश विशेष उदासी,
1: हाँ।
0: 14 बरिस राम बनवासी।
1: मोर मनोरथ सुंदर फूला, भरत करिनी जिमि हाथे समूल। अब सुझार तीन कई कई, तीन सी अचल विपत्ति कह नहीं। आह, क्या होने को था और क्या हो गया।
0: भरत कोई राउर पूत न हो ही, आने हूँ मोल बिसाही की मोही। क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ जो मेरी बातें आपको बाण की तरह लगी। अगर आपको ऐसा ही करना था तो पहले ही सोच समझ कर बात करते। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य सराही कहे वरु देना, जाने हु ले ही मांगी चबेना। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को निभाया।
1: इससे कैसे कठोर परिस्थिति पैदा कर दी कि उससे बच निकलना ही मेरे लिए कठिन हो गया। क्या सचमुच ही ये मेरे प्राण लेकर रहेगी? प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करी संग करू साथी। मैं सवेरा होते ही दूत भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकाल कर सब तैयारी करके घोषणा पूर्वक मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत को तो वे बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, इसलिए बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूं स्वभाव, राम मातु कछु कहे उन्हें काहु। मैं सब कीनी तो ही बिन पूछे, ते ही ते परे हो मनोरथ छूछे। प्रिय, अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वरदान असमंजस भरा मांगा है। परिहास साचे साचा, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध बताओ। हर कोई तो कहता है कि राम बड़े साधु हैं, तुम स्वयं

0: राम की सराहना किया करती थी और उन पर प्रेम भी रखती थी। अब तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। भला जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है वो माता के प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा। प्रिय, हंसो और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनी बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समझी देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आसीना।
1: आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मोहिन बहुत प्रपंच सुहाही, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने। कौसल्या ने जैसा भी भला चाहा है मैं भी उसे वैसा ही फल दूंगी, वो भी जीवन भर याद रखेगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि मोर मरनु, राउर अजस नृप समझिय मन मार।
0: हा राम, हा राम, राम।

0: क्रोध की नदी की तरह उफनती हुई कैकेयी को देखकर राजा दशरथ ने समझ लिया कि बात सच्ची है और अब तियमिस मींच उसीस पर नाची। अंततो गत्वा राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उससे कहा,
1: चली दिन कर कुल हो सी कुठारी, मांगू मात अब ही देव तो ही, राम विरह जनि मार असी मोही, राखु राम कहूं जही तही भाती, नाही ते जर ही जन्म भरी छाती।
2: अगर अंत में आपको ऐसा ही करना था तो मांग मांग तुम कही बल कहू, दुई की होई एक समय फुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या ये संभव है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे? अब या तो अपने वचन छोड़ दीजिए या फिर धीरज रखिए, इस प्रकार असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं।
1: तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे पिशाच होकर लगा, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। भरत तो फूल कर भी राजपद नहीं चाहता, तेरी कुबुद्धि में होनहार बसी है, ये सब मेरे पापों का ही फल है कि कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। मगर याद रखना, ये अयोध्या जिसे तू आज उजाड़ रही है फिर फली प्रकार बसेगी, समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता भी होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बढ़ाई होगी। केवल केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा

मरने पर भी नहीं मिटेगा, किसी भी तरह नहीं जाएगा। अब तो इन्हीं इकला करूं सोई, लोचनोट बैठ मुखोई। मैं तेरे आगे हौथ जोड़ता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझसे कुछ न कहना। अरिया भागनी, अंत में तू पछताएगी कि जो तू ताहत के लिए गाय को मार रही है। हा राम, हा राम। भगवान करे सवेरा ही ना हो, ये रात इसी तरह बनी रहे। भगवान सबको ऐसी सुबुद्धि दे कि कोई भी राम से इस बात की चर्चा न करे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदित न हो, अयोध्या को व्याकुल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना।